सम्मोहकौ सकलमोह विभञ्जकौ च तापत्रयोपशमनौ हि दयाविशेषौ श्रीशिरडि साई चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्यप्रधान समता गुणसौम्यशील श्रीचन्द्रहास चिरवाण्।